ये थोड़ा लगे नहीं रहा देखिए मटो नीचे यहाँ रही साथ गया रहे ये जानता था नहीं कि

0: प्रभु शिरा ने कहा पकान प्रभु शिरा
1: प्रभु बासु परिचार
0: ये क्या लगता है अंडोरा अंडोरा कितने जरा मकेन त्यागा गए थे दोस्त ये